नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर दिखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहू साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समा

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख। सो

सह कूसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया।

विसारणहारा। हरे आपे ठाकुर, हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी।

रहाओ। सब तेरी तू सब नीत्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाऊ सब तुझ ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल करण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप

शरण परे की राखुर शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझू करे हो रच्छा, राख ले हो मुहि राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारे।

नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किसी ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुन

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन

तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार तय है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताकि ताप तनक मह हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई। एक बार जिन्तु मैं सुभारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

गुण गोविंद गाही, सब सहनो कृपाल सुमाली, साही साही बिरथा कोई न जाय, जी आवे तुद आही। श्लोक महला पंजवां।

मनहु ना विसारेन, साध जना कै संग भवजल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिगारेन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ तरन गगन नव खंड मैं जो स्वरूपी रहो भर।

0: हर जस कह
1: प्रसाद तेरे सगल छेत्र ढाके
0: मन शरणी पर ठाकुर कहे
1: प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सास सास समरो प्रभु ऊंचे
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: प्रसाद अपुखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत को आलस की जय
1: प्रसाद अश्व हस्त असवारी
0: मन ते प्रभु को कबू न बिसारी
1: प्रसाद बाग मिलक तना
0: राख प्रभु हे प्रभु अपने मना
1: तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सत्य
1: जो एक लख है।

0: साध संग अमृत रस पुंचा,
1: संग हुए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बैन,
1: साध के संग न कथूं तावे,
0: साध संग अस्तित मन पावे,
1: साध संग माया ते पेन,
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।

0: राम नाम आसम सोपन डिजो मन पर बोध है।
1: राम नाम आत्म में सुधे।
0: राम नाम सारस पीवे।
1: पंडित उदय जगीवे।
0: हर की कथा हृदय बसावे।
1: सो पंडित फिर जो न आवे।
0: वेद पुराण सिमृत बूझे।

0: आदेश फरमाए।
1: जित लावो ते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना।
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी।
1: कई कोट पंखी सर्व पाए,
0: कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए।
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल।
1: कई कोट सस्यर सूर निखात्र,
0: कई कोट देव दान इंद्र छत्र।

0: संत पवित उसका भी होए मोह
1: संग दुखी सदा पवित
0: संग का दुखी किसे का नहीं
1: संग के दुखी को डान लागे
0: संग के दुखी को सब त्यागे
1: संग का दुखी महंकारी

0: सकलाकार
1: धारे पूरी सब भवन
0: नाग संग उदय संश्रमण
1: कर कृपा जिस आपने नाम लाए
0: नाग चौथे पद में भोजन
1: सत जा का सत स्थान
0: केवल
1: प्रधानूत सत सत जा की बाणी सत्कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: सफली
1: नाम रब का सुखदाई
0: विश्वास नानक गुरपाई
1: सत वचन साधु उपदेश सत नृत्य बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत।

0: आप सत सत सवधारी
1: आपे गुण कारी
0: सत सत प्रभक्ता
1: सत सत जसुंता
0: जिन हार को सत सब होए नारायण सत सत सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: करन करावन ते मूल पछान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभाया
1: सत ज्ञान किस मन प्रगटाया
0: जय निर्भव होए बसाना
1: जिसे उजा किस माय समाना
0: बस माहिले बस गडाई
1: ताको पिंड न कहना जाई
0: जय भुजन हार विवेक
1: नारायण नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै

0: छुटका
1: अस हस्तीरथ असवारी
0: टूटा टम चूट पासाई
1: तिस बुझे न बिगाना
0: नाम विसार नानक पछताना
1: मातु ले
0: अगर बिना को डूबे सियाने
1: भगत करो मन मी

0: मित्र सर्व कला अपे पर भी
1: तह वेद कदे कहा पोची
0: जब अपन आप आप उड़ता है
1: सगन अब सगन कहा बिचारे
0: अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: कौटा कुल को कहीं चेरा
0: बेसमान बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपनी गति जानवा
0: अचल अछेद अपे समाया
1: से व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: उनका नाही परवे
0: एक है एक एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: है अपन आप पत्यारा
2: कौन कथे कौन सुनने हारा।

रंगण वाला जी रंग है साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास

कूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह याहु जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कहनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़कै लाग है आन सुआई नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस्त कारण बेखोट गवावै एक पी न दे दस पी हैर ले कहो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतें आनंद उलास अपनी अमान कश बाहुल साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मन है माथा है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया की हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओ मन पछुतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाव नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गांड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जनमै मरै जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मन आपे आप करतन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थांत नंत्र रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमक नेमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिस त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमर रहो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिस त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखान जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दर

ਲਾਗੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕਾਂਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੀ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਧਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਉਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚੇਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਰਹੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸੁਕਾ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਹਿਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉਂ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗ ਹੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋ ਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਂਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋਂ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰਲਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਾਰ ਸਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਗਿਰੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨੇ ਸੁਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पहै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भारपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बनयाई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दियाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जानै। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान। निमख निमख ठाकुर नाम सुकारै, नानक उह अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्श। परत्रै रूप न पेखै नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। करन न सुनै काहू की निंदा, सब ते जानै आपस को मंदा। गुर प्रसाद दिख्या पर हरै, मन की बाशना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कूट मधे को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म।
काहू फल की इच्छा नहीं बच है, केवल भगत कीर्तन संग रच है, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुदय, राम नाम आत्म मै सोदय, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कहे उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाने असथूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर कौ तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरेउ आप होए आनत तरंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बान प्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब का विचारै, कई कोट नव तन नाम ते हवै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कहिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख है किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजो नहीं फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिवलागी, कई कोट प्रभ कौ खो जंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिलेउ प्रभ अभिनाश, कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो बिसथार,
कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट की ने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै साध साध ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को सा सा सुमारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मह थापो थापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे धार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर दिखै अपनी वड्याई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै प्रभ भावै बिन सास्ति राखै प्रभ भावै ता हर गुण पाखै प्रभ भावै ता पत तो उधारै आप करे आपन विचारै दोहा सिरिया का आप स्वामी खिलै बिगसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरना आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै पर मैं भूला दै दिस तावै निमुख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा को अपने करे बख्सीस ताका लेखा न गन जी जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगाश अपने बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्यो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सूग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊप आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करै बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की होतरवाल कबहू होए बहै बड राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुरप्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरत इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन भरमै परमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा आवर ना कोए कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बाहुर ना आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन ना मरते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कहे सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जोवन वंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस को कर्म वंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तृण समान काश संग न जावै बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिनमय होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै प्रवान कोट कर्म करे हों धारे शरम पावै सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगै कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए
जब लग जाने मुझ ते कश होए तब इस को सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस कटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै। माया पाछै पावै अनक भोग भिख्या की करै। नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को। राजै सुपन मनोरथ ग्रथि सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए। बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार। इसके हाथ कहा बीचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए। आपे आप प्रभ सोए ज्यो किश कीनो सो अपने रंग। सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझै देखाय करै बबेक आपे एक आपे अनेक। मरै न बिन सै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन बिसथार सब काश उसका उ करने हार। उस ते भिन कहो किश होए थान तनंतर एक सोए। आपुने चालित आप करने हार कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन आपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद कने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुने सरवन बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक। संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कठै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन। संत के हथे को रखे न कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ अलै। संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पीही गत पाए। संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक फिन टेकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी कौ डान लागै संत के दुखी कौ सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी कौ नाही ठाउ नानक संत पावे तां लै मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै। संत के दुखी कौ ध्यान प्रमाइयै संत का दुखी उजड़ पाईऐ। संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृत की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी कौ अवर न रखन हार नानक संत भावे तन लै उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़ फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी साध मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कै दुख न त्रष्ट है कोई जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटै कोई नानक जाने सच्चा सोए।
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਸਭ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਪੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ, ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ। ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਹੁ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਗਹਾਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪੁਰੋਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਬਿਵਹਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੇਹ ਜੀਓ। ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮੱਥਾ। ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਏਥੋ ਉਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਝੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਆਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ। ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੁ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ। ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸ ਫੂਲ। ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਅਭਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੁਸੁ ਬਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਦਿਸਾਰਨ। ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾਗੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀ ਨੁ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ। ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢਣ ਹਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਹਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਕਾਠ ਸੋ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਹੈ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੇ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਦਰਸਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਵਣਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਤਾਰ।
ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੁਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਹ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਕੇ ਪਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ, ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਪ ਕਹੇ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੇ ਪਾਇਆ, ਮਿਰ ਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬਿਨ ਦਾਨ ਜਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕੀ ਸ਼ਤਿਸ ਕਾਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾਪੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇਹੋ ਲੋਏ, ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋਜਾਨਾ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ, ਮਨ ਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ, ਸਰਬ ਤੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀ ਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵਹਿ ਸੇ, ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਵੇਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਵੇਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਨੈ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਗ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ, ਸਤ ਸਤ ਉਤ ਪਤ, ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਜੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨ ਬੂਜ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਜਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਤਾਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ,
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ, ਹੈ ਭੇ ਸਾਚੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਸੀ ਭੇ ਸਾਚੋ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਣ ਹਾਰ। ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ, ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕਹੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਬੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪ ਪਾਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੂਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਢਤ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਬੇਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੇ ਨ ਰਾਖੈ ਆਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੁਭਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਵ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੈ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ। ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਨ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰ ਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆ ਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ,
अमृत दृष्ट पेखै हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए कब जिह बा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पौचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै साध बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तप तमाहे ठाड़ वरताई आनंद पाया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे भाव चुका निरपव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथ तिन कृपा तहरी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए पोत पोत रव्या रूप रंग पह प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चालै बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद मैं उरतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ यो धन सांचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखू मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठत हवै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुभा को करै भली करनी सा सुभा भज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवख दलाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगै परवान मन प्रभु दो हर कै नाए दह दिस धावत आवै ठाए ताको बिघन लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भाओ बिनसै पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सूखा चूकाचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउ रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरै तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया बिस्थार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ अस वारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बौडू बे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के केल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल कोहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड़ सियाणप सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभ व्याप अनक बिस्थार एक ते भय एक आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी
जाचक जान जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें तिहावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जान त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाउ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पहया जन्म मरण दुख ब्रह्म गया ऐश पुनी सरदा सब पूरी रब रहया साध संग हजूरी जिस का सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में रख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरै जे बिखते काट है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होशियार सर्ब कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख काहू वत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शांद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पहाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका पेही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हर कसोग कह किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत पारम आपन केल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो के तठाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाते आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता है जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार
जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेब कहा को चीन जब आपन आप उर तारै तो सगन अप सगन कहा बिचारै जह आपन ऊच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेहु गुण का नाही परवेश जह एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो विसथार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पह पार दुख सुख मन अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पसार संत प्रताप दुहू पाक का पे तनि उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिसथार जात सुभावै तां सृष्ट उपाय अपने पाणे लय समाए तुम ते भिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समंदर सी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जान लागा हर एक नाए तिसकी आस न बरती जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई ऐस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर आन दिन पूजै गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मेल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुआओ आठ पहर प्रभ के कुह नेरा मिटै अज्ञान बिन सय अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दोए लिहु सवार राम नाम अंतर उर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच वापार करो वापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी एका टेक रखू मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस ते दूर कहा को जाए उबरै रखन हार तिहाए निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कौ कोई न पौचन हार सर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक काके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पह अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया श्लोक
ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत कहनाद कहन न जाई अचर्ज बिसमाद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्यापरहया भगवंत।

सत्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म ही होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्म ही उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है।

0: कथना कथी नया वैतूट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट
1: देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे।

0: मन किता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ।
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए।
0: हाथ बाणी फरमाओ सत सहान सदा मन चाओ।
1: कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार।
0: सुरति महा

0: वाह पवह सुमुंद न जानी है
1: सुल्तान गिरह सेती माल तन
0: कीड़ी तुलना हुवनी जे तिस मनो न विसरह
1: सेती कह

0: अपार अमल व्यापारी अमल पंडार।
1: अमूल आवह अमूल ले जाहि अमूल भाई अमूला सुमाही।
0: अमल दीवान अमल तुल अमल परवान।
1: अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान।
0: अमूल आख्या न जाए आख आख रहे।

0: गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे
1: ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावै इंद इंदासन बैठे देवते आदर नाले
1: सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ रखीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: रतन अपाए तेरे 68 तीर्थ नाले
0: गावै जोध महाबल सूरा गावै खानी चारे
1: गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
0: शेई तुदनु गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
1: गावन से मैं चित्त न आवन नान

0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई
1: कर वेखे कीता अपना जिब तिस दी बड़ियाई
0: जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई
1: पातशाह साहा पातशाहे नानक रह।

0: आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत
1: आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अबरा साध
0: संजोग विजोग द्विकार चला वह लेखे आ वह भाग
1: आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान
1: संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
0: जिव तिस भावे तिवै चलावे जिव होवे फरमान
1: देखे ओ नदर न आवे बहुता एहो विडान
0: आदेश सह आदेश आद नील नाद अनाथ जुग जुग एको वेस
1: आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार
0: कर कर वेखे सिर जनहार नानक सच्चे की सच कारु
1: आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग

0: मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी
1: अनुपे रूपे समस्तु निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता
1: अधो उद

0: चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भरती
0: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
0: चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
1: चात्री शन न सत्रे न मित्रे न परम न पित्रे
0: न कर्म न काये अजन्म अजाये
1: न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे
0: अधिश अदृश्य अदृश्य
1: पव

0: हैं के सर्वमंगली हैं
1: के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने
0: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौने
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसा
0: के सर्वत्र राज है।

0: सर्वत्र मन सदैव प्रधान
1: की सर्वत्र जाप्य की सर्वत्र ताप्य
0: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मन
1: की सर्वत्र इंद्र की सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वम कली में के परम फी में
1: अकल आला में के साहिब कला में।

0: करण है सर्व वारण है,
1: कृत के तन है जग के करण है,
0: मन मान्य है जग जान्य है,
1: सर्वम पर है सर्वम कर है,
0: सर्व पास्य है सर्व नास्य है।

0: तेरी भगवान की पाए कृपाऊं ते एक बिने करती के
1: मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे
0: कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे
1: भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीश न जात विचारे
0: एते पे तो कांप भूप अंत को नंगे पाए पधारे
1: गीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
0: गूंजत गूंज गुंजान के सुंदर सती है राज हजारे
1: भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
0: कृपा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे
1: तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बिसिख है
0: वेद पुराण के भेद पुराण जमीन जीवान समान के पेख है
1: कौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है
0: भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है
1: शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे
0: गुमान परिमन में कर पर्वत पंख लेना लेंगे
1: दूर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे
0: कृपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
1: वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार

0: परसानों पर जल सत्र सब लोक छपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र निरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे।
0: कोट स्नान गिजाद किदान नेग स्वंबर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म ही सर्व संसकी पत अंत फसे जम पात भरेंगे।
0: जे नार श्री पत के प्रसा पग ते नार फेर न देख करेंगे।
1: कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो।
0: नाथ प्रियो लियो सास मुंद्र लोग लोग गवायो।
1: पास की उपख्यान सुबैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो।

0: कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सरू बाजो और कच्ची बाणी।
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख बखानी।
0: हर हर नित करे रसना, क्या कछू ना जानी।

समूह परिवारां नूं बख्शिश करना, घरां विच सुख वरतौणी, बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, गुरु सिक्खी दी दात बख्शिश करनी, इसे तरह अपनी बाणी दे नाल जोड़ के रखना, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी रहमत करनी, जिन्हां गुरसिखां ने आप जी की कृपा सदका पावन श्री सहज पाठ की सेवा लई, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी ढिल्लो, सरदार रजिंदर सिंह मगर, बीबी दर्शन कौर, बीबी बलवंत कौर, भाई मनप्रीत सिंह, भाई हरभजन सिंह, महिंदरजीत सिंह, बीबी सुरेंद्र कौर, जसवीर कौर, कुलविंदर कौर अते

खोज शब्द में राज करेगा खालसाया की रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो

प्यारो अज सारे ही गुरु अर्जन देव महाराज जी दे प्यार विच बैठे हो सारे संसार दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह दे शहीदी पर्व नूं याद कीता जा रहा है। भावना बनायो ते गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दर्शन कीर्तन दे विचों करियो। और समा हो रहा है शब्द गायन करांगे गुरु अर्जन सच सजनहारा सारे लड़के आपां गायन करांगे।

0: शीघ्र की ईद पते
1: श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का सात संघ है जिस बच्चा ने शब्द पढ़िया जो गुरमत संगीत कीर्तन की मर्यादा है उसके आधार से पहले इन्होंने शान बजाई फिर मंगलाचरण गाया ते फिर शब्द पूरा पढ़िया अल्लाह ते ताना दे नाल साढ़े स्कूल दे विच कल हेमकुंड रीजनल लैवल का कंपीटिशन होया सीगा जिहदे विच कोई 16 टीम नॉर्थन कैलिफोर्निया तो आईया सन उन्होंने इत्थे हिस्सा लिया वक् वक् रागां च उन्होंने कीर्तन करना सी ग्रुप अनुसार चार राग सन जिन्हां दे विच बच्चां ने शब्द पढ़े ते बच्चों ने जो शब्द पढ़िया राग सारंग दे विच बट हूँ मैं बेनती करांगा नैक्सट ग्रुप नो उस स्टेज ते आण बाकी होर जिहड़े राग सन राग पैरो राग सारंग राग बसंत राग केदारा ए चार रागां दे विच शब्द पढ़े गए सन सो बड़ा ही आनंदमय वातावरण बनया होया सी स्कूल दे विच कोई 80 तो उत्ते बच्चों ने हिस्सा लिया हुण सात संगत तुहाडे सम्मुख जो बच्चे बैठे हैं यह भी खालसा स्कूल के इन्होंने भी सारंग राग दे विच शब्द पढ़ना है शब्द दे स्थाई दे बोल हैं माई रे मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रपियो खुमारो रहाओ सो बच्चे बैठे हैं सेज ते बच्चे हैं लैफ्ट साइड ते जोड़ी ते बच्चा जीवत सिंह उहदे नाल हारमोनीयम ते वायलन ते बच्चा सेवक सिंह टॉस ते बच्ची अजूनी कौर उहदे नाल बच्ची अर्जन हरगुन कौर ते नाल रबाब ते बच्ची दिलनूर कौर सो बच्चे शुरू करो जी पते बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी जिन्होंने तत्ती तवी ते बह के भी शुक्र मनाया, परमात्मा नु याद कीता, ओदे पाणे नु खिड़े मत्थे परवान कीता। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी शहीदां दे सिरताज, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दादा जी, और सानू ओदे पाणे दा रस कहना बड़ा आसान है, मनना बड़ा औखा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज मेर करन सहनशीलता निम्रता प्रेमा भगती हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय हुक्म विच जीवन दी पावर बख्शिश करन रहमत बख्शिश करन। आओ बड़े प्यार नाल इसी तरह अमृत वेले तो आप जी गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के अपने जीवन नू महान महान महान बना रहे हो। आओ भाई साहब जी भाई हरप्रीत सिंह जी कीर्तन नाल इसी तरह आप जी दे चरणा दियां हाजरियां भरनगे। गुरु अर्जन देव जी दी असीसां नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा फला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।